0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
0: या विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: अभियान सुन FM स्टुडियो टाइम
4: डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन्न नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सोनी एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 9 AM
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: सोलु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Studio time. The studio time.
2: It's 8 AM.
3: टाइमचेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम इन स्टूडियो टाइम
2: इट्स 2 पीएम न्यूज सपोर्ट 2 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
4: आदरणीय श्रोता वृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलु एफएम सोलु एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गीतहरू

0: check. Sorry, I'm fine. It's still your time.
1: It's 4 p.m.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दूधकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: 5 PM साँझ को 5 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुकुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

आदरणीय श्रोताहरू मागदै प्रभु येशूला पवित्र मिन्दे जयमसी अनि फ्याफुला न्याङजे यर्बला केतङ्गे परमेश्वर ल वचन क्यामजे प्रभु येशु शिवा क्यामजे बौरी रेन्बा विवा बारेरी सन्सियो बलमुला थेग्यामजे याङजे लानन आशिष यलमुला ती न्याङ छार जीवन तोन्बा विवा विषयरी सन्सेलमुला प्रिय रोमा गदे रङनीला चिठी पत्र एसएमएस कदे प्रतिक्रिया कदे नन्जे प्राप्त लडिबन मुला अनि रङनीला प्रार्थनाला विषयरी प्रार्थना लडिबन मुला प्रिय रोमा गदे रङनीजे चो मार्गदर्शन केतङ रङनीला रङलान केतङ हिन बमुला बेसी नन्दा पत्र पुहा बदा हामीले शिवको बेसी अनुरोध लबमुला प्रिय श्रोता पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल युहन्ना तीन अध्यायला छ पद हिन्जे आठ पदसम्म तिङ मनन लसेलमुला नाय प्रतिमुला राङनीजे सन्सिगो येसुजे सुङजी हिन्मानो नाय यत पाङमुला कोही छार दसी जन्म आदिनि विषम थेजे परमेश्वर राज्य त मराङमा अहम शरीर क्यामजे नबला शरीर हिन्ना अनि पवित्र आत्मा क्यामजे नबला आत्मा हिन्ना नाइ यत छार तसी नदोब मुला पङ्सी पाङमा अचम्मा थाङम गो लाबा हसो हाबा लाबा हसो यार्बा होसन यार्बा मुला ए लाबल आवाज सानबा हाम्बा मुला तर थे हानङ क्यामजे हाबा अनि हासो यार्बा थे हाँसे मुला आत्मा क्यामजे नबला हरेक मि एरङ मन तबमला बेसे येसु प्रभुजे राङला वचनली सुन्दे जो घटना त याङजे विचार लसी सिधी विषम प्रिय रो मागदे यहुदी समाजले निको देमास मिन लबला कोर्की प्रसिद्ध मि मुबला यहुदी समाजला सदस्य नु हिन्म मुबला थेजे येसुजे लस्युबला आश्चर्य रखे अनि येसुजे जन्मला उपदेश अनि यहुदी व्यवस्था त परदेशी सीमाले येसु ख्रिस्ट परमेश्वरला चाहिन्दा विवाद था याङजे अनि थे समाज क्यामजे लोङसी न त समाज खलाला कि समाज आज भो पाङला कि पाङसी थे लोङबा मोबला थे दैरी थे मुनङ लालटिन नसी येसु जा चु प्रश्न लबरी हाजी अनि येसु जे चु जवाब निको दिमास त दुन्स्यो भमुला अनि थे जे थे बाद आगो भमुला ए यहुदी कतेला यतेङा छ्याङ सदस्य तसिनो ज्ञान देन बुद्धि जे धर्मशास्त्र जे लिङ्गमला व्यक्ति तसिनो चु बाद अगोनि विषम स्यान्दो जे हरणले कोसे विव प्रश्न येसु जे लस्यो जे थे जे उत्तरी पाङ मुला आमाला गर्व ग्याम्जे नसिनु फेरि थे खेपतोसी हरङले आमलको क्याम्जे नभहाम्से येसुजे चुरी थेला आत्माला बाद सुङमला मुला तर थेजे शरीरले ताम पाङजे तिनी संसारी लानन जवान व्यक्तिका देमुला तर थिङीका देला शिक्षा जे लसे शरीर तामजे नाङमामुला अनि वास्तवरी येसु जे थेला आत्माला चिन्ता लसिबमुला वास्तवरी एदेनना छार दसी हृदय परिवर्तन तब अहम्नी विषम न्याङ रङजे रङ्गन सुधार लबा अहम्बमुला न्याङ्ल छिमेक न्याङ्ल समाज न्याङ्ल टिम न्याङ्ल जिल्ला न्याङ्ल देश हरणले परिवर्तन त प्रिय रो मागदे तिमी एदेन हृदयलाई परिवर्तन तब त खाँचो मला येसु ख्रिस्टी छार तसी जन्मेकी बद लानन खाँचो मला एदेन गाई वास्तवरी येसु त जब सेम नाङजे म सेब मुला विश्वास लब मुला अनि ग्रहण लब मुला विषम थे याङला हृदयरी चुनाव मुला अनि थेला उपस्थित जे याङला हृदय परिवर्तन
ताबमुला यं खराब ताबला व्यक्ति च्याब ताब हममुला पाप रक्सीजे नांगबलमी थेला छुटकारा ताब हममुला आच्याब साप्ताजे पांगबामी शुद्ध ताबा अनि परिवर्तन ताब हममुला नम्रत बोली दयालु अनि थेला जीवनी ताब हममुला अनि अर्को बाद रांगनी दा तिमी रांगनीला अगाडि नाइचो बाद अङ्गे न्याङ्गी विचारलाई तसी विषम प्रभु येशूजी न्याङ्दा मायालाई सुगमला अनि अर्को बाद रङ्गी दोरी मुबमला येशूजे होते सुङ्गिन बहेन्जे निकु देमस मिन लबमी थ्याम क्यामजे यर्जी खास गरी थे येशू द ग्रहण लबरी पङ्सी हावल मोबला थेला सेमला ताम हृदय ताम येशूजे कोसियोजी अनि अर्को लारी थेजे एरोङले सुङमला चु छङमान च्यान्दो हालजे लाभामा अनि येशु ख्रिस्ट बाहेक च्यान्दो हालदेनु लाभा अहम्बमुला परमेश्वरला माया न्याङ्ल बिजे एरोङले प्रकर्ताजी कि थेजे राङला कोर्किजे मोबला चानो चु संसारी पुहाजी ताकि चाख्यामजे न्याङ सोबाहाम गए परमेश्वर ल माया चोरी मुला कि न्याङजे माया लबला आहिन् कि थेजे न्याङ माया लसिबला हिन्न अनि न्याङ ल पाप ल उद्धार छुटकारा लबदा रङ ल चा पुहासिउजी योहन्न चार अध्यायला नौ हिन्जे दस पद्री एरौले प्रिबल मुला तरे अनन्त जीवन जो हिन्न कि ठेङी कदे जे एक कोर्की जे सत्य परमेश्वर हिन्न अनि रङ जे पुहावला येशुदा मसे गए प्रिय रोमा गदे प्रभु येशुला माया कति अचम्म लमुला थेजे याङदा रङला जीवन अर्पण लस्योजी यदि याङजे याङला जीवन परिवर्तन लसी थेद विश्वास लजी विषम थेङदा आशिष दोन्से लमुला तिङीले केटाङडे समय जेगादा विस्तारनु बिदलाजे प्रिय रोमागदे तिङील वचनडे परमेश्वर जे राङ्गिदा प्रशस्त आशिष तोन्स्यु गए आमेन।

0: रोगादे रंगसी दन्दे बर्खरङ यान्स्युबन मोला मार्ग दर्शन गेदाङ रोगादे तिनी लु गेदाङ रङनिदा खरङ बा नम्जी तुदे चु गेदाङ यान्छी रङनिदा तिकै खुल्दुली ताबा मुसाम रङनिला पत्रला नन्छी आस लसी चिब मोला रङनिला सल्ला कुई खला कुई खस्युला विवाह रङनिदा आनन्द देन मोला तुदे रङनिला प्रार्थना लदोब विषय दुगु मुला विषम रङनिसी कुई खस्युगु विवाह नन्ना देन मोला रंगनीदा नन्ना चु गेदाङला ठेगाना चुरङ मोला
1: कार्यक्रम मार्गदर्शन जीपीओ नम्बर 8975 ईपीसी 2561 काठमाडौँ नेपाल इमेल आईडी twrnepal@yahoo.com एसएमएस लागेरे 9847035679 9847035679
0: लसो रोदुगु तिनी इचु गेदाङ यासिङनी फेसिन बनमला दोषी खाबा चुनुन दुइरी रंगनी लंगोनसाङले रूप तबरी खाला बिबा बाच लबन नै इचु गेम फेसिनिला लसो फ्याफुल्ला

0: काय झालं होती मेरू? अनि रमिला के भयो? किन रोएकी तिमी? के भयो? के भयो? के भयो?
1: मम्मी सबै बहिनीलाई लगेर पुलिसकेसन जानु
0: अनि त
1: मलाई कसैसँग माफी माग्न जानेछ

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sanche Surya Fan Studio Time
2: It's 8 PM रातको 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
2: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
1: राष्ट्र को स्थान किसान
2: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस अहिले तपाईं उज्यालो रेडियो नेटवर्क सुन्दै हुनुहुन्छ अब प्रस्तुत छ आज बिहान 8 बजे प्रसारण भएको कृषि विशेष बदलिरो नेपालको पुनः प्रसारण

0: तपाईलाई चाहिए सहयोग छ टाटा युद्धको अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुविशु सुरक्षा
1: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पिड र स्टेबल इन्टरनेट
0: साथै सुविशु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
1: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
0: सुविशु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
1: 9 42 38 88 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

0: जाना छोड़नो बना भीतर जादा आउंदा साथी भाई खोजनो
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड